धुनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

0: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ

0: రామచంద్రోదయాలుర్
1: సర్వస్వమే రామచంద్రోదయాలుర్
0: నాణ్యం జానేనైవ జానేన జానే
1: నాణ్యం జానేనైవ జానేన జానే।
2: तो इस सप्ताह में हमने श्लोक संख्या 23 से 30 तक के श्लोक बोले, इनका अभ्यास करेंगे और अगले सप्ताह में अगले वाले श्लोक बोलेंगे। धन्यवाद। आज के अभ्यास में हमने कई विनोद सुने, वो विनोद भी संस्कृत में थे और आपने समझ भी लिए, मजा आया ही होगा। तो आप भी ये विनोद अपने दोस्तों को बताइए, उनको कार्यक्रम में बुलाइए। उनके साथ जब बातें करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत में ही बोलिए, तो वो भी जरूर संस्कृत सीख लेंगे और आपको संस्कृत का अभ्यास करने के लिए कंपनी मिल जाएगी। आज का प्रश्न याद है ना? प्रश्न है चायम अस्ति किम, उत्तर जरूर भेजिए। कार्यक्रमम समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: साहस का महत्व. जो बिना डरे काम करता है, भय का भूत उसे चार हाथ दूर भागता है. ऐसा व्यक्ति बेखौफ होकर चुनौतियों का सामना करता है और जिंदगी का सफर सफलता से पूरा कर लेता है. ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में साहसी कहलाता है और वो सम्मान का पात्र भी बन जाता है. दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में साहसी जांबाजों को सम्मान के साथ सम्मिलित किया जाता है. उनके अदम्य साहसी भरे कारनामों के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा उनका सम्मान भी होता है. ऐसे लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं. सच तो ये है कि इस अद्भुत गुण में विकराल से विकराल परिस्थिति का सामना करने का बल होता है. साहस अर्थात तीव्र इच्छा शक्ति के बल पर मुश्किल से मुश्किल काम की चुनौती को स्वीकार करना और आत्मविश्वास से जीत हासिल करना, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति को धारण करना ही सही मायने में साहस है. हार के डर से स्वयं को मुक्त करना और उमंग उत्साह से भरपूर संशय के बिना कार्य का स्वागत करना साहस है. वैसे देखा जाए तो आज चारों ओर चुनौतियां ही चुनौतियां है. रोजमर्रा का छोटा सा काम करना भी कभी कभी बड़ी चुनौती बन जाता है. ऐसे चुनौतियों भरे जमाने में आगे बढ़ने के लिए चाहिए साहस. साहस मन को मजबूती दिलाता है जिससे व्यक्ति सदा निर्भय रहता है. चुनौतियों का अगर सामना करना हो तो साहस की बहुत आवश्यकता होती है. इतिहास रचने वाले शूरवीर जांबाज अदम्य साहसी थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के पास छोटी सी सेना होते हुए भी वे शत्रु से टक्कर लेने का बड़ा साहस करते थे और अंततः दुश्मन को परास्त भी करते थे. साहस का गुण वीर पुरुष का वो वफादार दोस्त है जो विजय यात्रा में उसका हमेशा हमेशा साथ निभाता है. साहसी को पहाड़ जैसा कार्य भी राई के समान लगता है. आधुनिक युग में साहस के बल पर मानव चांद पर पहुंचा है. विज्ञान के अनेक आविष्कार भी साहस के कारण ही संभव हुए हैं. अतः साहस को अपनाइए और सदा विजयी बनिए. यही हमारी शुभकामनाएं.

0: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
7: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।
9: ಶ್ರವಣದಾನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು. ಕೆಎಲ್ಇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಉಚಿತ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 35 ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಕೇಳುವಂತೆ, ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಅರ್ಹತೆಗಳು: ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು 3 ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ತೀವ್ರವಾದ ಶ್ರವಣದೋಷ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಲಾಭಗಳು: ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಗು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ, ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಇಂದೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿ KLE ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ. ENT OPD ಸಂಖ್ಯೆ 16. KLE ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾವಿ. 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು PhD ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 100 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000 ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ನ್ಯಾಕ್ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुबर्णा रॉय, जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट है। ICMR NITM बेलगावी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर कार्य करने वाला देश का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। डॉक्टर सुबर्णा रॉय के नेतृत्व में संस्थान ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष, इंटरग्रेटिव हेल्थ केयर तथा पब्लिक हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर, हमारे वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: सबसे पहले तो अपने बारे में और अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मैं डॉक्टर सुबर्णा रॉय हूँ। बाई ट्रेनिंग मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, MSc PhD, और ICMR का मैं पिछले 20 साल से ICMR में काम कर रहा हूँ। ICMR NITM जो है, जैसे आपने बताया, ये हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान संस्था

0: है जो ICMR का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो इंटीग्रेटिव हेल्थ में काम करते हैं। बेसिकली हम लोग सब मॉडर्न साइंसेस बैकग्राउंड के साइंटिस्ट हैं और हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर शोध करते हैं। जैसे कुछ आता है जो आयुष के अंदर आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी, स्वारिकपा, नेचुरोपैथी, योगा, और कुछ होते हैं जो इसके बाहर का भी प्रैक्टिस होता है, जो दादी माँ के नुस्खे टाइप का जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, होम रेमेडीज, या फिर जो ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस है जो गाँव में लोग यूज करते हैं, ट्राइबल हीलर्स होते हैं पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल बेल्ट्स में होते हैं। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे जो शोध है, जो इसमें से ऐसे बहुत सारा सोल्यूशंस है जो एक्चुअली इफेक्टिव है, और उसके लिए जो शोध है वो हम लोग करते हैं। और जो स्टडीज हम लोग शुरू करते हैं वो फील्ड से शुरू होता है, जो कोई इसका प्रैक्टिस होता है या फिर जो आयुष से आता है उसका लेते हैं, करके उसका सेफ्टी स्टडीज करते हैं, उसका टॉक्सिसिटी का स्टडीज करते हैं, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हम लोग डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं, जो उसका केमिस्ट्री है, जो अगर पौधों से काम होता है तो ये पौधों में क्या क्या कंपोजिशन है उसका करते हैं, सीजनल वेरिएशन का करते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारा एनिमल स्टडीज के ऊपर।
1: अच्छा।
0: तो एनिमल्स के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, शोध करते हैं, और जो अच्छे जो लीड्स मिलता है उसको हम लोग आगे लेके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। वो होता है हॉस्पिटल्स में और कुछ होता है कम्युनिटी सेटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिजीज के लिए कौन सा दवाई है। और इसमें हमारे मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, साइंटिस्ट है, इसमें बेसिक साइंटिस्ट है जो MSc PhDs है, इसमें हमारे बायो इन्फॉर्मेटिशियंस है, इसमें केमिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन के लोग है। तो ऐसे बहुत सारा डिसिप्लिन हम लोग एकत्रित होके ये साइकिल हम लोग खत्म करते हैं।
1: अच्छा।
0: और जिसमें अच्छा जो रिजल्ट्स आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स में, इंटेंशन ये है कि वो एक्चुअल प्रैक्टिस में बदलाव आए। सो इट विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिकेसी आल्सो। सो ये हमारा इंस्टीट्यूट का काम है।
1: अच्छा, उसी के साथ सर ICMR का उद्देश्य क्या है मुख्य?
0: ICMR भारत का जो प्रीमियर हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो प्रमुख हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका शुरुआत हुआ था 1911 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। ICMR का जब शुरुआत हुआ था इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तो इससे जो फर्स्ट शुरू हुआ काम, वहाँ का वो टाइम का जो भी हेल्थ जो डिजीज था, जो प्रॉब्लम्स था, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर उसका सलूशन निकालना इसी से शुरू हुआ था। फिर रिसर्च फंडिंग भी एक मेजर एक्टिविटी था, जो नॉन ICMR इंस्टीट्यूट्स को फंड्स दिया जाता है, तो ये फंडिंग बॉडी के रूप से भी काम करता था और अभी भी करते रहे हैं। सो अभी जो मेन ICMR का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उसके अंतर्गत आता है। ICMR का 28 इंस्टीट्यूशंस है अक्रॉस द कंट्री। कुछ है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स जो कोई एक एरिया के ऊपर या एक डिजीज के ऊपर काम करता है, जैसे कि हमारा चेन्नई में ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम होता है NIRT में, हमारा मुंबई वाला इंस्टीट्यूट जो है जो वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, देन हमारे इंस्टीट्यूट है पुणे में जो वायरोलॉजी का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरल डिजीजेस के ऊपर काम करते हैं। वैसे हमारा इंस्टीट्यूट है जो बेलगाम में है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। ये छोड़ के और भी हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च NIHR। सो ये डिफरेंट लोकेशंस में स्थित है और वो जो रीजन का जो प्रॉब्लम्स हेल्थ रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, एंड देन पूरा नेशनल लेवल पे भी जो मेजर जो डिजीजेस है या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी शोध करते हैं। तो अभी हमारा जो ICMR का जो मेन फंक्शंस है वो है पूरा जो कंट्री का हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम, इसके ऊपर काम करना, नए टेक्नोलॉजीज लाना, नए दवाई निकालना और पॉलिसी गवर्नमेंट को पेश करना। सो पॉलिसी विल कम ओनली आफ्टर एविडेंस। तो हम लोग रिसर्च एविडेंस में डेटा जनरेट करते हैं और उसी को ही हम लोग पॉलिसी करके गवर्नमेंट को देते हैं। सो ये हमारा ICMR का मेन फंक्शन है। ये हो गया ICMR का अपना सेटिंग में।
1: अच्छा।
0: लेकिन ICMR जैसे मैंने बताया कि इट इज ऑल्सो अ फंडिंग बॉडी, तो जो भी हेल्थ रिसर्च दूसरा इंस्टीट्यूट में होता है, आप चाहे KLE में ले लीजिए, कि AIIMS में ले लीजिए, कि CMC में ले लीजिए, कि और भी कोई भी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, इसका जो अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव्स होता है रिसर्च का, इसका फंडिंग होता है।
1: Okay.
0: तो इसका एक मैकेनिज्म है, इसका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, उसको रिव्यू होता है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी और जो जिसका ज्यादा सोल्यूशन आने का चांसेस ज्यादा है उसको फंडिंग मिलता है। सो
1: okay.
0: इसीलिए ICMR इज एक्चुअली द एंटायर हेल्थ रिसर्च ऑफ द कंट्री इज काइंड ऑफ ICMR।
1: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में ICMR की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट है?
0: जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ट्रीटमेंट पॉलिसी सब कुछ डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, और ICMR वही एविडेंस जनरेट करता है, चाहे उसका अपना इंस्टीट्यूशन से हो या फिर जो उसका कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस को फंड किया गया है, जो मेडिकल बॉडीज है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उन लोगों के ऊपर। तो ये सब इकट्ठा करके एविडेंस तैयार होता है और एविडेंस डिटरमाइंस पॉलिसी। नए ड्रग्स, नए ट्रीटमेंट रेजिम्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, अभी ये सब ICMR हेल्थ रिसर्च में इसका कंट्रीब्यूशन करता है कंट्री के लिए।
1: वर्तमान समय में सर ICMR किन प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रों पर काम कर रहा है?
0: ICMR इंडिया सेंट्रिक जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो मेजर एरियाज ट्रेडिशनली था, उसके ऊपर से अभी नए प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कैंसर का बहुत महत्व रखता है, अभी नए चीज़ें भी आ रहे हैं जैसे कि एनवायरमेंटल हेल्थ, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का भी हेल्थ इम्प्लिकेशन आता है। तो ये सब 360 डिग्री ऑफ हेल्थ रिसर्च इज डन बाय ICMR और फोकस उसमें ही रहता है जो नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज है, जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं कि ये हमारा प्रायोरिटीज है, तो उसके ऊपर ICMR काम करते हैं।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में क्या ऐसे बदलाव आए हैं?
0: ये जो स्वास्थ्य का जो इश्यूज है ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। पहले बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बहुत ज़्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: जो दवाइयाँ आने के बाद या फिर दूसरा टेक्निक्स आने के बाद वो थोड़ा कम हुआ था। इंसिडीज बढ़ता गया, जैसे कि अभी हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है, या फिर डायबिटीज़ ले लीजिए, कैंसर्स ले लीजिए, ये बढ़ रहा है। अभी इन्फेक्शस डिजीजेस पहले जैसे उतना खतरनाक तो नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम है जैसे कि कोविड का पेंडेमिक आपको देखने को मिला, अचानक कभी भी कुछ चीज आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अभी हम लोग जब एंटीबायोटिक लाए, एंटीबायोटिक वाज द मेन रीजन व्हाई वी हैड लेस बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन द पास्ट, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, नॉर्मल जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है उसमें काम नहीं होता है, और हमारे पास ज़्यादा एंटीबायोटिक्स है नहीं। तो बड़े हॉस्पिटल्स में, टर्शियरी केयर सेंटर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेजिस्टेंट है सब ऑर्गेनिज्म में, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये नए चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्फेक्शियस डिजीज में काम होता है, और जो नॉन इन्फेक्शियस जो है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उसमें ये हाइपरटेंशन है, माल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज है, कैंसर्स है, जिसके ऊपर हमारा रिसर्च बढ़ाया गया है। और नया जो है वो है, जैसे बताया अभी वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें हम लोग वेटरनरी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ सब एक साथ देख रहे हैं हम लोग। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री में कि कोई फार्म एनिमल्स में यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन चेन में भी आ जाता है, तो उसको कैसे उसको रोध किया जाए उसके ऊपर भी काम होता है। सेकेंडली है द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, अभी बहुत कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बहुत बढ़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आया है, तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशंस ढूंढने में, और इट बिकम्स मच इजियर टू एक्चुअली मैनेज एंड इवन डिजाइन न्यू इंटरवेंशंस।
1: स्वास्थ्य अनुसंधान से आम नागरिकों को क्या लाभ मिलता है?
0: एविडेंस से ही पॉलिसी और ट्रीटमेंट डिटरमाइन होता है। जब तक हम लोग रिसर्च या स्वास्थ्य का अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक ये एविडेंस मिलता नहीं रहेगा, और ये भी चेंज होता रहता है। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, हर दिन नए नए इंफॉर्मेशन मिलता है, जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उसका अपडेट होना बहुत जरूरी होता है, और उसके हिसाब से समटाइम्स ट्रीटमेंट में ऑल्सो चेंज, नॉलेज चेंजेस, तो उसका नए नए तरीके आते हैं। जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजीज आने लगे हैं, अभी जो शोध बहुत साल लगता था अभी बहुत जल्दी ये शोध होता है, सो टाइम ऑल्सो हैज काइंड ऑफ शॉर्टेंड फॉर गेटिंग न्यू ड्रग्स, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू रिसर्च।
1: मान लीजिए सर कि कोई अगर नई दवा आती है तो उस पे उपचार पद्धतियों पर किस प्रकार संशोधन या फिर शोध होता है?
0: अगर नया कोई दवाई आता है तो उसका

0: एक आने का एक प्रोसीजर रहता है, सो बहुत सारे फेजेस बोलते हैं, वो उतर के फिर नए दवाई आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई जो एक बार ये सब जो फेजेस है ये उतर के आया देन वो बहुत साल रहा, वो भी कभी कभी नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: बिकॉज सेफ्टी इश्यूज भी रहते हैं उसमें, सो जो पहले स्टडीज में पता नहीं चलता है तो वो पोस्ट मार्केटिंग भी मॉनिटरिंग होता है। सो ये जो स्टेजेस मैंने बताया, फर्स्ट शुरू होता है लेबोरेटरी के काम से, वो लेबोरेटरी में मॉलिक्यूल्स लेके या फिर कोई ड्रग्स लेके इसके ऊपर हम लोग इन विट्रो स्टडीज बोलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में करते हैं। उसके बाद आता है एनिमल स्टडीज, हम लोग नॉर्मली छोटे एनिमल से चालू करते हैं।
1: अच्छा।
0: कभी कभी ज़ेब्रा फिश में करते हैं क्योंकि एथिकल रीजन, हमें सबका एथिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो मान के ही हमें करना पड़ता है ताकि एनिमल लाइफ भी कम हो। तो वो लेके उसका अगर सक्सेस होता है तो वो जाता है एफिकेसी स्टडीज में, तो वो कितना इफेक्टिव है एनिमल्स में वो स्टडीज हो जाता है। वो होने के बाद फिर जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स होता है उसमें बहुत सारा फेजेस आता है। फर्स्ट होता है फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। तो ये जो फेज वन है ये बहुत कम लोगों, 10-15 लोगों में काम किया जाता है, और उसमें बेसिकली सेफ्टी देखा जाता है कि ह्यूमंस के लिए सेफ हो। एक बार सेफ हो गया देन उसके बाद बड़ा स्टडीज किया जाता है कि हाउ गुड इट इज, वेदर जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उससे बेहतर है कि ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है। तो अगर उससे बेहतर है या फिर मोर कॉस्ट इफेक्टिव है तो आगे जाता है। तो फिर देन उसके बाद बड़ा स्टडीज होता है, इन लार्ज पॉपुलेशन मोस्टली मल्टीसेंट्रिक स्टडीज होता है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें देखा जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है, देन एक बार वो हो गया देन मार्केटिंग लाइसेंस होता है, देन मार्केट में आ जाता है। और उसके बाद एक फोर्थ फेज होता है जो बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। तो ये पोस्ट मार्केटिंग मार्केट में आने के बाद वो रियल लाइफ कंडीशन में देखा जाता है कि लोगों का ऊपर कैसे असर कर रहा है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें भी थोड़ा सा सेफ्टी का भी पार्ट रहता है कि हो सकता है कि बहुत सारा लोगों में से एक लोगों का कुछ एडवर्स इवेंट हो, तो लेकिन वो भी जानना जरूरी है ताकि हम लोग केयरफुल रहे कि अगर एक लेके थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, कभी कभी रैशेस निकलता है कि
1: correct,
0: जो
1: correct.
0: है, तो उसमें केयरफुल होना जरूरी है। तो ये होता है, ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड ऐसे ड्रग्स है जो पोस्ट मार्केटिंग के बाद भी विदड्रॉ किया गया बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज। तो इसलिए ड्रग्स हमेशा सुपरवाइज्ड रहता है।
1: ओके आज भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ कौन सी है सर?
0: मैं इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट जो क्लासिकल है कम्युनिकेबल डिजीज का, इन्फेक्शस डिजीज का, जो हम लोगों को कोविड ने दिखाया। अभी इबोला का एक आउटब्रेक चल रहा है जो WHO ने भी डिक्लेयर किया है। तो ऐसे कोई भी वायरस हो, बैक्टीरियल स्ट्रेन हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से फैल सके, बिकॉज हम लोग आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं, एक जगह में होता है तो दूसरा जगह में बहुत आसानी से आ जाता है, चाहे थ्रू ships, imports हो, goods हो, या फिर human से हो कि animal से हो, आ जाता है। So ये challenge तो हमेशा हमारे पास रहेगा। इसका सबसे बड़ा problem ही है इसका against में drugs and vaccines। तो क्योंकि हमें either उसको prevent करने के लिए vaccines चाहिए, नहीं तो उसको treat करने के लिए drugs चाहिए।
1: Correct.
0: तो ये एक important area है infectious diseases का। दूसरा है rising non-communicable diseases। हमारा lifestyle के वजह से कि हमारा फूड के वजह से अभी हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो, मेंटल हेल्थ हो, ये सब हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसको इसका समाधान ढूंढना उतना आसान नहीं है क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल है। जो इन्फेक्शस डिजीज में है हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से होता है, अगर उसको रोक सके तो उसको कंट्रोल में आ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ज्यादातर केसेस में ये मल्टी फैक्टोरियल होता है। तो इसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना मेजर थ्रस्ट एरिया होता है। तो ये एक इशू है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो आ रहा है आजकल का रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इश्यूज है, एनवायरमेंटल हेल्थ पॉल्यूशन, इसके वजह से नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर पुराना प्रॉब्लम्स को और भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: स्क्रीन टाइम हमारा, डिवाइसेस, सो ये सब नए चीजें हैं जिसका इफेक्ट नॉट ओनली ऑन आवर फिजिकल हेल्थ बट ऑन मेंटल हेल्थ भी होता है। सो दीज आर न्यू चैलेंजेस दैट हैव।
1: तो इन पे अगर हमें कंट्रोल पाना है तो हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या सलाह देंगे हम लोगों को?
0: अगर हम लोग ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बात करें तो परहैप्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेस्ट वे फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेस्ट। हम लोग तो हमेशा बचपन से सुनते रहे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये जो प्रिवेंट

0: करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारा लाइफस्टाइल, मोबिलिटी बढ़ाना है, एक्सरसाइजेस करना है, जो डाइट हम लोग ले रहे हैं, अभी बच्चे तो फास्ट फूड के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं, हेल्दी फूड जो है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड्स जो है, चाहे कोई भी रीजन का हो, हफ्ते में कितना दिन वो एक्चुअल ट्रेडिशनल फूड्स लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, लेकिन इसके वजह से क्या है कि जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है उनको मिलता नहीं है। इवन सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो भी वो जितना हम लोग नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है और जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है उतना होता नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत लोग स्लीप डिप्राइव्ड है, बच्चे अगर बहुत पढ़ाकू है तो रात को जाग के पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली इफेक्ट होता है अपने सेहत के ऊपर, तो वो भी ध्यान देखना चाहिए, सेहत है तो भी पढ़ाई होगा।
1: बिल्कुल।
0: देन आता है एडिक्शन, ये एक मेजर इशू है, तो एडिक्शन बहुत तरीके होता है, इसको मैं स्क्रीन एडिक्शन भी मैं इसी में ही डालूंगा, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन ही है, बहुत ज्यादा मोबाइल्स फोन चलाना, देखना, कंप्यूटर्स के सामने। इवन जो प्रोफेशनल्स है, हम लोग ज्यादातर आजकल जो व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स है, कंप्यूटर्स के बिना तो चल नहीं सकते, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो उसका भी इफेक्ट होता है। सो ये सब कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली स्ट्रेस, अभी शायद हर कोई स्ट्रेस में रहता है, यू cannot find anybody who is not under stress, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए we have to learn to cope up with stress and manage them well.
1: Okay. उसी के साथ सर, आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज हो या फिर हाइपरटेंशन हो और हार्ट अटैक भी, ये सारी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही है, तो उसका क्या रीजन होगा?
0: मैंने जैसे कहा है कि ये मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, और ये मल्टी फैक्टोरियल है, कोई भी एक फैक्टर से इसका हम लोग समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे, तो हमें पूरा होलिस्टिकली उसको देखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल हम लोग जितना मॉडिफाई कर सकते हैं उसको करना है, जो कंप्यूटर में जो डेटा सेंटर में काम करते हैं उसको तो नहीं बोल सकते हैं कि आप कंप्यूटर के सामने मत रहो, उनको तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उनका अपना सेहत का भी ख्याल रखना है। कुछ देर अगर वर्किंग पॉपुलेशन में है, फिट है, तो कुछ देर एक्सरसाइज करें। फूड, उसमें तो हर किसी का ध्यान होना चाहिए, वो चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर स्टूडेंट हो कि रिटायर्ड पर्सन हो, हेल्दी फूड इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, तो उनका जो डाइट के हिसाब से जो अच्छा सूट करता है, लेकिन विथ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज, वो लेना बहुत जरूरी है। अवॉइड एडिक्शंस, चाहे वो टोबैको का हो कि लिकर का हो कि इवन स्क्रीन का हो, ये अवॉइड करना चाहिए। स्लीप बहुत जरूरी है, दे शुड इंश्योर दैट दे हैव प्रॉपर साउंड स्लीप व्हाट एवर टाइम पॉसिबल फॉर देम। थोड़ा सा अनुशीलन लाना चाहिए अपने, डिसिप्लिन लाना चाहिए अपने लाइफ में, तो ये इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनेक्शन।

0: KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health-related problems. Experienced doctors and ultra-modern facilities ke saath. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center. Nehru Nagar, Belagavi. Call 08312473777.
1: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है. आपने ट्यून किया है केली वेणुधोनी 90.4 एफएम और एक विशेष प्रोग्राम हमारा शुरू है जिसमें हम सुन रहे हैं डॉक्टर सुबर्णा रॉय जो आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट हैं. सर बहुत से बातें हमने अब तक डिस्कस की. तो जैसे ब्रेक से पहले हमने डिस्कशन किया कि ये जो मधुमेह है या फिर उच्च रक्तदाब है उसको कैसे हम कंट्रोल करें या फिर क्यों बढ़ रहे ये सारी बीमारियां. तो अभी जो मेंटल स्वास्थ्य है मानसिक स्वास्थ्य है उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर.
2: मेरे जानकारी के हिसाब से आज के दिन में 7 में से 1% कोई ना कोई मानसिक समस्या के शिकार है. सो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग विद मेंटल आई विल नॉट से डिसऑर्डर्स बट एटलीस्ट विद सम प्रॉब्लम. इंडिया का सुइसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है. इसीलिए ये जो मेंटल हेल्थ वाला जो इशू है ये ट्रेडिशनली थोड़ा निगलेक्ट किया गया. हम लोग भी सोचते हैं कि ये हम लोग बोलते हैं पागल है. पागल नहीं है. हम लोग सब स्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होता है. जैसे फिजिकल हेल्थ भी होता है कभी कभी हम लोग बीमार रहते हैं कभी अच्छा नहीं लगता बॉडीली वैसे मेंटल उनका भी सेम ही इशू है. इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये स्ट्रेस का इशू है. स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है. इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए हमेशा कोई भी काम के साथ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी की ज़रूरत है. अगर कोई म्यूजिक में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो म्यूजिक करे. किसी को पेंटिंग करना आता है पेंट करे. कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ बातें करे. तो ऐसे टाइप का आप अपना जो अच्छे चीज जो लगे उसमें थोड़ा मेंटली डाइवर्शन बहुत जरूरी है. जब जरूरत पड़े दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर एज वेल क्योंकि दे विल बी एबल टू हेल्प देम आइदर थ्रू काउंसलिंग और इफ रिक्वायर्ड थ्रू ड्रग्स. मोस्टली काउंसलिंग से ही बहुत चीजें सुलझा जा सकता है. सो ये बहुत जरूरी है. अभी जो हम लोग विकसित काल जो बोल रही है अमृत काल में जो विकसित भारत का गोल्स है उसके हिसाब से हम लोग मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारा स्ट्रेस दिया गया है. बिकॉज ये अमृत काल के बाद हमारे लोगों का जो एवरेज एज है हम लोग बुढ़ापे के और जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा. अच्छा। और एज में मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिमेंशिया आता है भूलने का आदत सो ये आजकल बहुत जल्दी आने लगा है. थोड़ा और जाने के बाद वो अल्जाइमर्स टाइप का भी हो जाता है तो कम्प्लीटली भूलने का जो आदत है वो हो जाता है. सो इसीलिए बट दिस आर मोस्टली प्रिवेंटेबल. इसका अगर हम लोग शुरू से ही हम लोग उसके लिए तैयार होते हैं कि हम लोगों को एक्टिव रहना है. एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिमेंशिया के लिए बताते हैं लोगों आपको कैलकुलेट करना या फिर थोड़ा पढ़ाई करना तो क्या है अपना ब्रेन को यूज करना वो बहुत जरूरी है. इवन आफ्टर रिटायरमेंट पीपल शुड बी एक्चुअली इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्योंकि इसमें एविडेंस है कि आप जितने ज्यादा ये पढ़ाई लिखा किया हो या फिर आप करते हो तो उसमें आपका वो जो डिमेंशिया का ऑनसेट एज है वो डिले हो जाता है. एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप योगा करते हो कि कोई एक्सरसाइज करते हो वो भी डिमेंशिया को डिले करता है एंड इट हेल्प्स इन बस्टिंग स्ट्रेस ऑल्सो. तो इसीलिए दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ बींग प्रमोटेड प्रमोटिव हेल्थ में. सो हमें बीमार होना ही नहीं है. सो द बेस्ट वे इज टू प्रिवेंट. और जो पहले का हमारा आउटलुक था कि हम लोग हमेशा डिजीज बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढते थे अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन विच वी डू नॉट बिकम डिजीज्ड वी रिमेन फिट एंड हेल्दी. सो यही मंत्र है अभी.
1: बिल्कुल सर. युवाओं में ये जो बढ़ता तान तनाव है या फिर स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा पाई जाती है उसके बारे में क्या सलाह रहेगी.
2: ये जो मैंने बताया कि अमृत काल का हमारा जो टाइमलाइन है इसका वन ऑफ द रीजन इज दैट हमारा जो एज है एवरेज एज है वो बहुत यंग है. बहुत प्रोडक्टिव है और इसी प्रोडक्टिव एज को सब मिलके अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही भारत का विकसित प्लान के हिसाब से जाएगा. तो इसीलिए जो ये जो युवाएं हैं ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है हमारे पॉपुलेशन में बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप और दैट इज द रीजन व्हाई देयर हेल्थ बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव टू बी फिट एंड दे हैव टू बी एबल टू एक्चुअली वर्क एंड मेक टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल. तो इसीलिए दे मस्ट फॉलो दिस फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ थ्रू प्रॉपर डाइट, थ्रू प्रॉपर स्लीप, थ्रू बस्टिंग स्ट्रेस, तनाव कम करने के लिए, बाई having good habits, bringing in discipline in their life, avoiding substances for abuse and leading a good healthy lifestyle.
1: सर आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारे रील्स रहे या फिर कई सारे मैसेजेस रहे, वो देख के कई सारे अफवाह रहती है, वो देख के लोग उसको फॉलो कर देते हैं और उससे उनके हेल्थ पे मतलब साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, तो इनसे हम कैसे बचे?
2: जो रील्स में आता है उसमें से ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत होता है और उसका कोई बेस नहीं होता है.
1: अच्छा.
2: सो पीपल शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली व्हाट एवर आर टोल्ड इन सोशल मीडिया एंड इन रील्स. दे शुड ओनली फॉलो दोज विच कम फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स. जो गवर्नमेंट का सोर्स रहता है कि एक्चुअल रिसर्च बोर्ड जैसे ICMR का सोर्स है, इसी को ही माने. बाकी जो है दे शुड टेक ऑलवेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो किससे सुन रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: करेक्ट.
2: क्योंकि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देते हैं. हाँ, हो सकता है.

0: है उन लोगों का रील्स ज्यादा शेयर हो, उनको वो स्टार बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोल रहे हो सही है।
1: करेक्ट, तो वो थोड़ा सा हमें स्टडी करके उस पे भरोसा करना चाहिए।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए बेस्ट वे इज दैट जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स है, कि जो ऑथेंटिकेट सोर्स है, जो गवर्नमेंट का सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सोर्स है, ऐसे सोर्सों को बिलीव करें, और जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस है, अगर KLE का ऑफिशियल हैंडल से कुछ निकलता है सो पीपल शुड बिलीव दैट। जो दूसरा इंस्टीट्यूट का, जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट का, उसका ऑफिशियल हैंडल से कोई आता कुछ निकलता है तो उसको दे कैन बिलीव, लेकिन नॉट जस्ट एनीबडी saying something और उसको believe करके और उसका follow करना वो सही नहीं है।
1: बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है?
0: महिलाओं में particularly जो गर्भवती हैं, इन लोगों का health बहुत important है, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनका ही नहीं, उनका जो fetus है, जो बच्चे पैदा होगा, उनके लिए भी बहुत important है। Regular एंटीनेटल चेकअप होना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। वैक्सीनेशन जो है वो लेना जरूरी है, जो IFA टैबलेट्स वगैरह जो आयरन के लिए जो दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है, इसको कॉम्प्लायंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्या है बाद में उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, इन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो वैक्सीनेशन स्टिक से लें, जो भी वैक्सीन का रेजिमेंट है। हाइजीन उनको लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि उनका इन्फेक्शन कुछ ना लगे, वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ ऑफ एज, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना है। एंड न्यूट्रिशन के लिए भी, बोथ मदर एंड चाइल्ड का न्यूट्रिशन हमेशा एकदम अच्छा रहना चाहिए, पोषण ठीक से होना जरूरी है। इवन अदरवाइज जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, तो इनका भी अपना सेहत के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलरली विद देयर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल।
1: इसी के साथ सर, क्या नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है?
0: डेफिनेटली, सबको जो 30 इयर्स के ऊपर है उनको तो नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग लोगों को देखते हैं कि दे आर फिट, लेकिन कभी उनका BP लेने जाएंगे तो देखेंगे कि ब्लड प्रेशर है। सो क्या है, समटाइम्स पीपल डू नॉट नो दैट दे हैव हाई BP,
1: करेक्ट,
0: बिकॉज दे हैव नॉट चेक्ड, तो ये बहुत जरूरी है। सिमिलर थिंग विद ब्लड शुगर ऑल्सो, कि प्री डायबिटिक स्टेज में बहुत सारा लोग पाए जाते हैं जिनको पहले पता ही नहीं था कि वो प्री डायबिटिक है। इवन डायबिटिक जो है उनको भी कभी कभी पता नहीं होता है कि वो डायबिटिक है बोल के। तो इसलिए ये जितना जल्दी इसको हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गया डिटेक्ट करने में तो देन मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ता है। लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत रिगरस होता है, वो डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जितना जल्दी टेस्ट करेंगे, जितना जल्दी उसको डिटेक्ट करेंगे, यू कैन एक्चुअली मैनेज दैट और इवन रिवर्ट बैक फ्यू लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस।
1: सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है?
0: आज के दिन में AI और टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग हेल्थ और इंक्लूडिंग हेल्थ रिसर्च। मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, ये जो डिजिटल और जो डिजिटल हेल्थ का है, ये जो भी आजकल का स्कीम्स जो लॉन्च हो रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो कि वैक्सीनेशंस का हो, सब आपके साथ आधार के साथ लिंक रहता है। एक ही जगह में आपको इमीडिएटली डेटा मिल जाएगा कि किसने क्या वैक्सीनेशन लिया है, कब लिया है, उसका कुछ डोज बाकी है कि नहीं। हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, ये मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग पहली बार बहुत सारा केसेस ऑफ डिप्थीरिया डिटेक्ट किया बीजापुर और बागलकोट एरिया में। अब हम लोग जब उनका वैक्सीनेशन हिस्ट्री लेने गए, उन लोगों को दे आर अनेबल टू टेल कि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था कि नहीं लिया था, कब लिया था, कितना डोज लिया था, बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं था। कार्ड दिया जाता था, लेकिन कार्ड में कितना एंट्रीज है डिजिटली कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, कार्ड खो गया तो खो गया। सो ऐसे होता है, लेकिन दीज आर ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, लोगों को मरना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन एक बार ये सब डिजिटाइज हो गया, देन यू कैन एक्चुअली गेट बैक योर डेटा वेरी इजीली। तो आपका चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का हो, आपका ट्रीटमेंट का प्रोफाइल हो, सब कुछ ये टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डिजाइनिंग न्यू थेरेपीज, इन डिटेक्शन। आपका इतना सारा अभी गैजेट्स आ रहा है, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक गैजेट डेवलपमेंट स्टेज में है, IIT दिल्ली के साथ ICMR काम कर रहा है, वो एक वेयरेबल हेलमेट है जो 2-व्हीलर में आप चल के अगर जाओगे, अगर आपको आप गिर गया फिर कोई सर पे चोट लगा, तो दैट हेलमेट में ही सेंसर्स है, इट कैन एक्चुअली टेल यू कि आपको हेमरेज होने का चांसेस है कि नहीं है। सो इट कैन बी सच अ लो कॉस्ट एंड सच पोर्टेबल थिंग, आपको हमेशा उसके लिए MRI करने के लिए लेके जाने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए तो ये यूज हो सकता है अर्ली स्टेज में.
1: Correct.
0: लेकिन ये दीज आर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग. इसके साथ आप AI डाल दीजिए, तो एक बार इसका AI के लिए भी तो हमें डेटा चाहिए. तो ये डिजिटल डेटा, अगर जितना ज्यादा हम लोग डिजिटल डेटा जनरेट करेंगे उसके ऊपर हम लोग AI लगा सकते हैं और उसका जो इंटरप्रिटेशन एबिलिटी है, जो उसका रोबस्टनेस है, वो बढ़ता रहेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, ये हर फील्ड में हो रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज मोस्ट वेलकम.
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर. इतना बड़ा बदलाव फिर देख पाएंगे हम अगर वो यूज में आ गया तो.
0: ये आ जाएगा कुछ सालों में ही ये सब आ जाएगा.
1: अच्छा, डिजिटल हेल्थ सेवाएं भविष्य में किस प्रकार मदद करेंगी सर?
0: मैंने जैसे बताया कि डिजिटल हेल्थ होने से क्या है, एवरीथिंग बिकम्स योर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स. सब रिकॉर्ड्स में रहता है.
1: करेक्ट.
0: मैंने जैसे बताया कि डेटा ही ड्राइव करता है हमारा पॉलिसी, हमारा एविडेंस, ये सब एक साथ आप चुटकियों में आप डेटा निकाल पाएंगे और क्या ज़रूरत है उसके ऊपर काम कर सकते हैं. कोई एक पर्सन का भी अगर मेरा पूरा हेल्थ डेटा एक जगह में रहा, कोई भी डॉक्टर मुझको मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट दवाई हो सकता है या फिर कुछ रेमेडी हो सकते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम करते हैं, ये आजकल ऐप आ गया है, ये आयुर्वेद का आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो वाता पिता कपा है का वो जज करने के लिए ऐप्स आ गया है. तो ये बिकम्स मच इजियर और आप उसमें डालेंगे और उसके हिसाब से आपका जो डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करेंगे वो आसानी हो जाता है. सो ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया. ऐसे बहुत सारा चीज है जिसमें डिजिटल हेल्थ इज एक्चुअली हेल्पिंग. देन इंश्योरेंस सेक्टर में तो है ही, तो बहुत सारा जो स्कीम्स आ रहा है जो पर्टिकुलरली फॉर द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एक्चुअली यूजिंग दिस हेल्थ टेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर.
1: ICMR की भविष्य की योजनाएं क्या है?
0: अभी क्लासिकली हम लोग इंडियंस हर चीज में प्रॉब्लम्स ढूंढने में बहुत माहिर है, लेकिन सॉल्यूशंस देना बहुत डिफिकल्ट होता रहा है. सो अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है, इतना बड़ी देश है, इतने लोग हैं, अभी फोकस आ रहा है सॉल्यूशंस ढूंढने में. सो दैट इज वन मेजर फोकस मैं बोल सकता हूँ इन जनरल, कि हम लोगों का एक एक प्रॉब्लम्स को लिया जा रहा है एंड इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढा जा रहा है. एंड दिस सॉल्यूशंस आर नॉट ओनली रिलेटेड टू पीपल हु आर इन टू हेल्थ रिसर्च, ये इंजीनियरिंग सेक्टर भी कर रहे हैं, IITs में भी इसमें सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज भी इसका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं. सो दैट इज वन मेजर चेंज दैट हैज हैपन. सेकंड मेजर चेंज इज द एरियाज. मैंने बताया अभी जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है इसके वजह से जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे हमारा स्क्रीन टाइम का क्यों ना हो, ये जो डिजिटल, ये जो हमारा लाइफस्टाइल में हम लोग जो हमारे वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसका क्यों ना हो, या फिर इवन इन्फेक्शस डिजीज में ये महामारी टाइप का अगर कोई पैंडमिक आ गया तो उसका प्रिपेयरनेस क्यों ना हो, तो ये सब के लिए हमारा कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बनाया जा रहा है. मैं कोविड का एग्जाम्पल दे के बताता हूँ. दैट वॉज अ आई ओपनर. हम लोग तो बहुत जल्दी फर्स्ट इन द वर्ल्ड काइंड ऑफ वैक्सीन बना दिया इतना जल्दी में. अभी हमारा पास BSL-4 का जो एक लैब था, अभी दुनिया का, अभी इंडिया का बहुत सारा जगह में BSL-4 लैब्स बन रहा है, ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो जाए हर जगह में, दे बिकम कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग कोई भी कितना भी डेंजरस वायरस क्यों ना हो उसको डिटेक्ट करके उसका सोल्यूशन निकालने में सक्षम है. सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहे हैं इनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि दे आर एबल टू केटर टू द नीड व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराइज. तो बोथ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ये सब चेंजेस दिखने को आ रहा है.
1: अच्छा, स्वास्थ्य अनुसंधान में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या अवसर है सर?
0: मैं तो कहूँगा ये एक बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, करियर इन हेल्थ रिसर्च एंड इन हेल्थ टेक्नोलॉजीज. जैसे कि ICMR के हर इंस्टीट्यूट में वेरियस प्रोग्राम्स रहते हैं फॉर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम रहते हैं जो बच्चे बैचलर्स के बाद या फिर प्रेफरेबली मास्टर्स के बाद इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं. वो आके अपने हिसाब से दे कैन डू द इंटर्नशिप, चाहे 2 महीना का हो, 6 महीना का हो, 1 साल का हो. सो उसमें उन लोगों को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है रिसर्च में. उसके ऊपर आता है PhD प्रोग्राम. ICMR का बहुत स्ट्रांग PhD प्रोग्राम है, ये हमारा ACSIR के साथ टाई अप है. ICMR फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च में आता है अंडर द ACSIR फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्रीज. इसमें फेलोशिप भी बहुत अच्छा मिलता है और उसके साथ साथ उनका पीएचडी करने का अवसर मिलता है। दे कैन चूज एनी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द आईसीएमआर नेटवर्क इन द कंट्री।

0: ये दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके तरह ही मेरिट लिस्ट बनता है और जो टॉप रहते हैं मेरिट में तो दे कैन चूज देयर इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड दे कैन गो देयर एंड डू द पीएचडी। पीएचडी होने के बाद पीपल कैन कम एज पोस्ट डॉक्टरल फेलोज, बहुत सारा फेलोशिप्स वगैरह मिलता है वेरियस आईसीएमआर इंस्टीट्यूशन में। और अगर दे वांट टू बिकम परमानेंट फैकल्टी, हम लोगों का जो साइंटिस्ट है, हम लोगों का हेल्थ रिसर्च साइंटिस्ट कैडर में हम लोग आते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट होता है, तो दे कैन अप्लाई व्हेनेवर दिस वैकेंसीज आर डिक्लेयर्ड। सो इट कम्स इन द आईसीएमआर एंड द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट्स, इट कम्स इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार समाचार में आता है, उसमें वो देख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो डायरेक्ट आईसीएमआर का हो गया, ये छोड़ के जो हेल्थ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस अदर देन आईसीएमआर आल्सो, बहुत सारा आईसीएमआर का प्रोजेक्ट चलता है बहुत सारा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में। मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स होता है जो डीएचआर के अंडर आता है, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट्स है जो मेडिकल कॉलेज में के अंदर है, वहाँ पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है जो आईसीएमआर और डीएचआर फंडेड है। इसके सिवाय इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल रिसर्च का बहुत महत्व दिया जाता है, तो उसमें रिसर्च सेल्स रिसर्च यूनिट्स बनाया जाता है जिसमें स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च अपॉइंटमेंट्स किया जाता है एट वेरियस लेवल्स, उसमें भी आ सकते हैं।
1: यानी कि काफी अपॉर्चुनिटीज है,
0: काफी है और ये बढ़ रहा है।
1: युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो कहूँगा रिसर्च एक ऐसा चीज है वेयर यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स, यू कैन ड्रीम एंड यू कैन फॉलो द ड्रीम। तो आप अपना हिसाब से आपका सपना देखो और वो जो सपना है उसको साकार करने के लिए आप रिसर्च को ले लो, और ये एक हमारा एक ही प्रोफेशन है जिसमें आप बताते हो कि आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स मेन मैंडेट में होना है लेकिन आप बताते हो कि आप क्या करोगे, उसके लिए आपको फंड्स मिलता है चाहे सरकार से हो कि कोई अदर फंडिंग एजेंसी में, तो आपको आपका काम आपका सोच को साकार करने के लिए पैसा दिया जाता है, आपको सैलरी दिया जाता है और उसका जब रिजल्ट निकलता है वो भी आप आपके नाम से पब्लिश करते हैं।
1: करेक्ट।
0: और नॉट ओनली दैट, इफ योर पब्लिकेशन एंड इनोवेशन इज गुड इनाफ, आपका जीवन के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाएगा और जो सब्सिक्वेंट लोग हैं वो भी आपका नाम कोट करेगा आपका पेपर का हो कि इनोवेशन का। ये मौका किसको मिलता है?
1: बिल्कुल।
0: तो ये भी देश का ही सेवा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमेशा रिसर्च को एक करियर बनाओ, और इसमें हर चीज हर दिन एक नया चैलेंज होता है तो मोनोटोनी नहीं आता है और आप अपना ड्रीम को परसू कर सकते हो।
1: बिल्कुल। आखिर में सर, हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या विशेष संदेश रहेगा?
0: मैं कहूँगा कि जो ये हेल्थ रिसर्च और हेल्थ का जो इकोसिस्टम है ये एक बहुत ही बड़ा रूप में उभर के आने वाला है अगले कुछ सालों में। ये एक अपने हिसाब से एक उद्योग, एक इंडस्ट्री करके बन रहा है। इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, नॉट ओनली फॉर अस सीकिंग हेल्थ और सीकिंग वेलनेस, इट इज ऑल्सो फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन टेक्नोलॉजीज, इन डिवाइसेस, इन सर्विसेज। तो इसीलिए बहुत सारा जो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस है उसका भी बहुत सारा मौका है। इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरीली दैट एवरीबॉडी कैन हैज टू कम इनटू द रिसर्च इटसेल्फ, बट दे कैन कम इनटू वेरियस वेज इनटू द हेल्थ सेक्टर। देयर आर प्लान्स, बहुत बड़ी प्लान्स है, जो हील इन इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसको सब इकट्ठा देखेंगे तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज आता है ये हेल्थ सेक्टर का। और इसमें वी इनवाइट एवरीबॉडी टू कम टुगेदर, बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड लेट अस टुगेदर मेक इंडिया वेरी बिग एंड वेरी हेल्दी कंट्री अंडर द विकसित भारत 2047।
1: थैंक यू सो मच सर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए
0: धन्यवाद। थैंक यू।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। डॉक्टर सुबर्णा रॉय हमारे साथ थे, जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट हैं। कैसा था आज का एपिसोड मुझे जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904। मनीषा फिर हाजिर होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार।

हेलो एंड नमस्कार सभी सुनने वालों को, संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं KLE वेनो ध्वनि 90.4 FM पर। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप खाना बना रहे हो और या खा रहे हो तो मुस्कुराहट के साथ में खाना बनाइए और खाइए, देखिए जीवन कितना खुश होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं है। चलिए अभी मुस्कुराइए।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल आपके? बाबा देखकर तो लग रहा है एकदम चकाचक है। स्वागत है आप सबका आपके और हमारे पसंदीदा शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। मैं हूं आप सभी का प्यारा धुलारा रेडियो दोस्त यानी कि आरजे आयुष। और दोस्तों आज हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ जबरदस्त गाने, और साथ ही देने वाले हैं आपको कई सारी ऐसी जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। आज का ये एपिसोड या टॉपिक होने वाला है आपकी सेफ्टी के लिए, और इस टॉपिक को हमने नाम दिया है #RoadSafety। That means navigating the path to the safer journey। So हो जाइए तैयार और कर लीजिए अपने रेडियो और चैनल की वॉल्यूम एकदम फुल, और सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वन मोर टाइम टू योर फेवरेट शो। आप सुन रहे हैं बी रिलैक्स ओनली ऑन विनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, और आज हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी के ऊपर, यानी सड़क सुरक्षा पर। दोस्तों, रोड सेफ्टी इज अ क्रिटिकल इशू दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज एट लार्ज। तो रोड सेफ्टी के इस टॉपिक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी में हम लोग सीखते हैं इसके मेजर्स एंड प्रैक्टिस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड फैटलिटीज ऑन द रोड्स। दोस्तों, हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल सड़क पर होने वाले हादसे कई ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कई सारी जाने जा रही हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे में जब हमें पता होता है कि हमें हेलमेट पहनना है या फिर स्लो ड्राइविंग करनी है, और फिर भी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हादसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हादसे होना स्वाभाविक भी है। चलिए करेंगे बात थोड़ी गहराई में आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स। तो कहीं जाइएगा मत और सुनते रहिएगा हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

0: A moral obligation, but also an economic and social imperative. एक safer road environment कई हद तक healthcare cost को भी कम कर सकता है, productivity को भी कम कर सकता है और बढ़ा भी सकता है. Overall life quality को enhance कर सकता है या बढ़ा सकता है. दोस्तों, as a citizen, it's our responsibility. तो आप इन road सुरक्षा rules को rules की तरह ना देखें, अपनी जिम्मेदारियां समझें. और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए करेंगे आपको थोड़ा सा entertain. तो सुनते रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: ए सेटिंग हुई क्या?
1: अपन बोला तुम लेला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है यार।

नमस्कार। बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा आपको हमारा इंतजार रहता है, वैसे ही हमें भी रोज शाम 5 बजे आपका इंतजार रहता है, ताकि आपकी और हमारी थोड़ी सी बात हो पाए। और 5 बजते ही हम और आप ट्यून कर लेते हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू, जहां आप सुनते हैं मुझे यानी RJ आयुष को। दोस्तों, कुछ कारण मैं आपको बताता हूं एक्सीडेंट्स के, जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं और अवॉइड करना भी चाहिए। पहला, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मतलब आप ड्राइव तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है, विच इज नॉट एट ऑल सेफ। स्पीडिंग यानी तेज गति से गाड़ी चलाना, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर एक्सीडेंट्स, एंड नेवर drink and drive. Overuse of drugs, overthinking, reckless and fatigue are some of the common culprits. और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब रोड या फिर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, poor vehicle maintenance यानी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से सर्विस ना कराना या सर्विस में ना रखना, lack of safety facilities, ये भी एक कारण हो सकता है। Addressing these factors requires a multifaceted approach that involves education, enforcement and infrastructure development. चलिए बात करेंगे कुछ strategies की, जिससे हमें बहुत सारी मदद मिल सकती है। After this super hit songs, या सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

हेलो वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन एंड पीपल ऑफ ऑल द एजेस, आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे ट्रेंडी शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनुध्वनि 90.4 केएलई कनसु, और मैं हूं आरजे आयुष आपके साथ हमेशा बना हुआ। दोस्तों, स्ट्रेटजीज जैसे एजुकेशन एंड अवेयरनेस, प्रमोटिंग रोड सेफ्टी, एजुकेशन फ्रॉम अ यंग एज कैन इंस्टिल एंड रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स इन फ्यूचर ड्राइवर्स। और दोस्तों, अवेयरनेस कैंप्स भी होना चाहिए जहां ये समझाया जाए कि भैया ड्राइव करते वक्त किसी टेक्स्ट पर बात ना करें या कॉल पर बात ना करें, जहां ये बताया जाए कि सीट बेल्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे आपका बर्ताव रोड पर काफी हद तक अच्छा हो सकता है। स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज एक्ट्स एज अ डिटरमेंट टू रेकलेस ड्राइविंग बिहेवियर। इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसे स्पीड कैमरास या फिर चेक पॉइंट्स काफी हद तक मदद कर सकते हैं रोड वायलेंस को कम करने में और सही ड्राइविंग प्रैक्टिस करने में। जानेंगे और भी स्ट्रेटजीज के बारे में, बट आफ्टर दिस अमेजिंग सॉन्ग्स, तो आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनुध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

दोस्तों आज का ये एपिसोड भरा हुआ है कई सारी जानकारियों से। उम्मीद है आपको भी ऐसी चीजें पता चली होगी जो शायद आपको ना पता हो। दोस्तों सेफर रोड मींस सेफर यू। चलिए एक दो तरीके और बताता हूँ मैं इन्हें प्रिवेंट करने के लिए। पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वेल डिजाइंड रोड्स विद क्लियर साइनेज, प्रॉपर क्रॉसिंग, सेपरेट साइकिलिंग एंड वॉकिंग लेन्स कैन क्रिएट अ सेफर रोड एनवायरनमेंट। राउंड आउट, स्पीड बम्प्स एंड ट्रैफिक क्लेमिंग मेजर्स भी मदद कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जिसका मतलब है व्हीकल सेफ्टी टेक्नोलॉजी, जैसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक या लेन से बाहर जाने पर एक वार्निंग इंडिकेशन जो आपकी गाड़ी में आती है, एंड एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल जो ड्राइवर को थोड़ा सा असिस्ट कर सकते हैं क्रैश होने से पहले, और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कैन ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो जिससे रोड पर भीड़ और कंजेशन काफी हद तक कम हो सकता है। और अब आप कर दीजिए स्ट्रेस को बाय बाय, क्योंकि आपके मनोरंजन के लिए हम बजाने वाले हैं कुछ सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसूपर।

हेलो एंड वेलकम बैक पीपल। आज के इस बेहतरीन एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जरूरी टॉपिक के ऊपर जो सबको पता तो होता है लेकिन कोई भी इसे 100% तरीके से फॉलो नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी के ऊपर और आप ट्यून कर चुके हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, रोड सेफ्टी कोई रूल फॉलो करने का मैटर नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाइल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल्स इन एनहांसिंग रोड सेफ्टी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। हर ड्राइवर को या साइकिलिस्ट को अपना अपना एक्शंस बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि भैया हम रोड पर रूल्स फॉलो कर रहे हैं और उसको करना भी चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ड्राइव करते वक्त म्यूजिक सुनना भी एक खतरनाक हो सकता है आपके लिए। हमेशा अपने म्यूजिक सिस्टम्स का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपको पता रहे कि भैया आजू बाजू में जो गाड़ियां चल रही है वो आपसे एक पर्याप्त दूरी बनाए रखी है। साथ ही दूसरों के राइट्स और सेफ्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे ओवरऑल सेफ्टी काफी ज्यादा और हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप भी इन सब बातों का हमेशा ख्याल रखें और प्रण ले कि आप रोड सेफ्टी को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। और इसी बात पर आपको मैं सुनाऊंगा कुछ दिल को छू जाने वाले गाने ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

दोस्तों आप ट्यून है वेणु धोनी 90.4 के LE कनक सुबह और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात, जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे नैना बरसे रिमझिम, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा गीत जो है ओ कौन थी इस मूवी से, मदन मोहन जी का म्यूजिक है। तो चलिए सुनते हैं साधना के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग नैना बरसे रिमझिम।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जो है गीत तेरे सांझ का। इंतकाम मूवी का ये सॉन्ग है जो मूवी आई थी 1969 में। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा जिसको म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, साधना और संजय खान के ऊपर फिल्माया गया ये गीत तेरे सांझ का।

सुनेंगे जो है आप क्यों रोए। साधना के ऊपर फिल्माया गया ये गीत जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। ये भी गाना है वो कौन थी इस मूवी का।

वेणुधोनी 90.4 के एल ई कनसू पे आप ट्यून है और यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगला बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है गुमनाम है कोई। नंदा और हेलन के ऊपर फिल्माया गया ये गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन जी ने। तो चलिए सुनते गुमनाम है कोई।

कौन है जो सपनों में आया, ये गाना हम सुनेंगे जो फिल्माया गया है राजेंद्र कुमार के ऊपर। सायरा बानो का भी अभिनय है। झुक गया आसमान मूवी का ये सॉन्ग, जो मूवी आई थी 1968 में। म्यूजिक है शंकर जयकिशन जी का और गाने को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

अगला गाना हम सुनेंगे कभी तू छलिया लगता है, पत्थर के फूल का ये गाना है। पत्थर के फूल मूवी का ये गाना है जो मूवी आई थी 1991 में, सलमान खान और रवीना टंडन का अभिनय। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 KLA।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। अनुरोध मूवी का ये सॉन्ग है जिसको आवाज दी है किशोर कुमार ने। राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया ये गीत जिसको म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गाने को लिखा है आनंद बख्शी जी ने। तो चले सुनते है प्यारा सा सॉन्ग। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 KLE गणेश।

अगला बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। मोहम्मद रफ़ी जी का ये सॉन्ग है जो द ट्रेन मूवी से है, 1970 की मूवी है। म्यूजिक है आर डी बर्मन जी का। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा सॉन्ग गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।

0: संभालो मुझको ओ मेरे यार, संभलना मुश्किल हो गया।
1: यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। ये खूबसूरत सा सॉन्ग हम सुनेंगे यादों की बारात में, सुनते रहो वर्णधोनी 90.4 KLE।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुध्वनि 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।